चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिर्मे मे चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिश्च दुर्विपुंसतिश्च मे मे चतुर्विपुंसतिश्च।

च भौवनश्च च भौवनश्च च भौवनश्च भौवनश्च च भौवनो भौवनश्च भुवनो भुवनश्च भौवनो भौवनश्च भुवनः च भुवनो भुवनश्च च भुवनश्च च भुवनश्च च भुवनश्च भुवनश्च च भुवनो भुवनश्चाधिपतिरधिपतिश्च भुवनो भुवनश्चाधिपतिः चाधिपतिरधिपतिश्च चाधिपतिश्च चाधिपतिश्च चाधिपतिश्च अधिपतिश्च चा

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।